सर्वेतानां उपकपति इचितां पतितां तुम्हां किपमेव समिच्छतु सफे पुरेन्तु संकपा चन्धोपनर्